0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप. बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम टू सेट द पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची जहां आपके लिए हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन लेकर आते हैं. इस हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है. हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है. वी आर गोइंग टू हैव सम स्पेशल शाउट आउट आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें. ऑल दिस एंड मोर, तो स्टे कनेक्टेड विद अस थ्रू आउट द काउंटडाउन. सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10. ज़ारा खान स्केल्स का गाना, गाने का नाम है मूव बॉडी. पिछले हफ्ते से अपनी पोजिशन पर बरकरार मूव बॉडीज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद शान एंड दीदार

म्यूजिक श्लोक लाल के लिरिक्स, गाने का नाम है दिलदारा। दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 10।

0: ऐसा क्या है ना शान की आवाज में कि उनके गाने को जब हम सुनते हैं, वी कैन इमेजिन हिम स्माइलिंग, कि ये गाना गाते हुए कैसे स्माइल कर रहे होंगे। मैं उनके बारे में बात करते हुए भी स्माइल करने लग जाती हूँ दीदार कौर एंड शान की आवाज में। दैट वॉज दिलदारा दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो मुझे। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली बिलीव जो गाना हमें पसंद आने वाला होता है ना, वो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है। कब कैसे सुनना है, हम कौन सा अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं कि आज मैं वो गाना जाके सुनूंगी और मुझे वो गाना अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं होता है। वी जस्ट स्टंबल अपॉन दैट सॉन्ग। मे बी मैंने रेडियो पे चलाया हो, आपने सुन लिया हो, आप किसी कैफे में है और वहां वो गाना सुनाओ। इनफैक्ट मेरे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि पहले वो जो रियलिटी शोज आते थे ना टीवी पे, कोई कंटेस्टेंट जो गाने गा रहे थे लाइव परफॉर्मेंस, उनके थ्रू आई यूज्ड टू लव दोस सॉन्ग्स। एंड देन रिसेंटली इट्स ऑल अबाउट ओटीटी शोज फॉर मी। आई रिमेम्बर मैंने नेटफ्लिक्स की एक ओटीटी सीरीज पे सबसे पहली बार प्रतीक कुहाड़ का तूने कहा मैंने सुन लिया सुना था, एंड आई लव द सॉन्ग। बंदिश बैंडिट्स के कितने सारे गाने हैं जो मैं बहुत पसंद है। देन लास्ट ईयर मिस मैश का, इट्स इनक्रेडिबल दैट हमें अब ओरिजिनल म्यूजिक मिल रहा है फ्रॉम ओटीटी शोज। इश्क है फ्रॉम मिस मैश इज वन फॉर द हिस्ट्री बुक्स। ये गाने इतने बड़े हुए, लोगों को इतने पसंद।

आए कि इनकी अपनी अलग पहचान बन गई। और काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, इट्स आल्सो फ्रॉम अ ओटीटी शो एंड इट्स अ नई नवेली एंट्री ऑन अ काउंटडाउन। मुसाफिर कैफे का गाना है। आई नो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है कि क्यूट सिंपल सी लव स्टोरी है। मैं अभी तक नहीं देख पाई हूँ, अगले वीकेंड का प्लान है, मैं देखूंगी। दो लोग पहाड़ों में, छोटा सा कैफे, सबका यही ड्रीम है। एंड जो गाना डेब्यू कर रहा है इस हफ्ते, उसका नाम है काफी है ना। ये गाना उस सिंपल सी लव स्टोरी की सिंपलिसिटी को डिफाइन कर देता है। दैट अल्टीमेटली जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं, या हाउ डू वी वांट टू फील लव्ड, कि किसी के लिए हमारी प्रेजेंस बस इनफ है, दैट काफी है ना। अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। प्रियांश श्रीवास्तव एंड जुनिंदा गांधी की आवाज में है गर्वित प्रियांश, शाउट आउट टू बोथ ऑफ देम। उनकी कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है काफी है ना। आई नई नवेली एंट्री ऑन द काउंटडाउन from Musafir Cafe. It debuts seedha on Gaana number 8. You're listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 8.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: जब फरक ने कहा हमारा ठोकरों से खास नाता है, the entire generation felt it together. फरक की आवाज सुनने की कॉम्पोजिशन, दिस सॉन्ग तारे इज माय फेवरेट फ्रॉम द काउंटडाउन. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले हमने सुना संजू राठौड़ का बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Mirchi par, this is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanega. Connect with me Instagram par jao, follow karo, handle is at RJ Kanega. Follow karna bilkul free hai. Gaane suggest karti hoon, baate batati hoon. Koi aapko baate share karni ho, bindaas aake hit me up. It's time to put a special spotlight on a song jo abhi top 10 gaano mein entry nahi mara hai. पर जिस तरह से जनता इस गाने को प्यार दे रही है, definitely it will make it the countdown. आज के spotlight का गाना is by one of the most promising artists of this countdown of industry today. I am talking about बंजारे. उनका नया नवेला गाना आया है बरसात. The song captures that feeling कि जब आपका breakup हो गया या किसी ने आपको छोड़ दिया है, that hurts obviously. But पता है उससे भी ज़्यादा बुरा क्या लगता है? When we realize कि कोई हमसे आगे बढ़ चुका है, वो move on कर चुका है. ये गाना exactly वहीं पर है. But before we talk about this song and we listen to the song, let's talk about बंजारे, जिनका गाना बैरन मेरा और आपका दोनों का फेवरेट है. ये पूरा गाना आगे countdown में फीचर होने वाला है. But let's talk about these artists. It's a brother duo called Sumit and Anuj जो कुरुक्षेत्र जिले से आते हैं, जिन्होंने हरियाणवी म्यूजिक के टूवर्ड सबकी सोच बदल दी. रिच सॉन्ग राइटिंग, वेरी फोक स्टोरी टेलिंग का उनका अंदाज है एंड गानों को इतना होलिस्टिक बनाते हैं दैट यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स द इमोशन जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं. एंड सेम वही बात बरसात. इट गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ ग्रीफ जो एक बंदी फील कर रही है, जिसका गम खालीपन इस गाने में आपको जोर जोर से सुनाई देगा. द सॉन्ग गोज थ्रू फोर स्टेजेस ऑफ ग्रीफ. पहले तो वो मानती ही नहीं है, दैट इज डिनायल. फिर वो टूट जाती है, दैट्स पेन. फिर उसी गाने के दौरान वो ये बात समझती है कि जो छोड़ के चला गया वो मुड़ के नहीं देखने वाला, दैट इज एक्सेप्टेंस. एंड देन उसके बाद शी डिस्कवर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग, जहां वो खुद के सुकून को प्रायोरिटाइज करती है. वो ये बात चुनती है कि अब इस फीलिंग को पकड़ के तो नहीं बैठ सकते, दैट इज लेटिंग गो. एंड वी ऑल हैव फेल्ट दीज इमोशंस कभी ना कभी किसी के टूवर्ड्स किसी स्टेज पर. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. बंजारे आर बैक एट इट अगेन. उनका नया नवेला गाना कॉल्ड बरसात, रीचिंग फॉर अ हार्ट, इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन आवर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट. बंदी का नाम है RJ कनेका. एंजॉय.

0: कितने मेरी।
1: गॉड डैम, आप हरियाणवी नहीं समझते, मैं नहीं समझती हूँ, बट वो फीलिंग ऑफ लेटिंग गो वो पूरी अच्छी तरीके से इस गाने में समझ में आती है। गाने का नाम है बरसात बाय द वन एंड ओनली बंजारे ऑन आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट दिस वीक। बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। इट्स अ सॉन्ग फ्रॉम मुसाफिर कैफे। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार रेखा भारद्वाज जी एंड राघव कौशिक की आवाज में, राघव कौशिक का ही म्यूजिक। गाने का नाम है दरमिया, दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
2: Number 5.

इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4

0: cannot not groove to this song. Anish Sarkar, Hriday Ka Gaana, Gaane Ka Naam Hai, Udi Udi, 11 haftos se is countdown par barkarar this week on Gaana number 4.
1: Gaana Indie Top 10. Gaane Ka Kasaat. On
0: Mirchi par, this is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jao, follow karo. Mera handle is at RJ Kanika. The show is all about the hottest pop music of the week. And sometimes, jo gaane hame achhe lagne hote hain na, hum unhe dhoondne nahi nikle hote hain. Wo bas hamare raaste aa jaate hain. Aise maine pichle hafte ek gaana suna called Baavre. It's one of those songs जिसको सुनते ही मैंने अपने चार दोस्तों को बोला कि यार ये गाना सुन, बहुत अच्छा लगेगा. तो I'm going to play that song for you, which is basically about one-sided love. And इतने poetic way में इन्होंने one-sided love के बारे में बात करी है. You know, वो चांद है, चांद के आसपास एक रोशनी है जो ना उस चांद को छू पाती है ना उसे छोड़ के जा पाती है. बस वो है. उस रोशनी के जरिए यहाँ पर one-sided love के बारे में बात हुई है. Honestly, गानों में अच्छा साउंड करता है. आई होप किसी को कभी ना हो, बट प्लॉट ट्विस्ट ये है दैट इस गाने में फीलिंग गहरी है, सोच बहुत गहरी है, बट गाना बिल्कुल भारी नहीं है. इट्स अ ब्रीजी पॉप सॉन्ग, बहुत मेलोडिक रैप है. विकेट सनी ने इसे ऐसे लिखा है कि दर्द छुपता नहीं है, पर गाने की फीलिंग आप पर बोझ की तरह भी नहीं आती है. इट्स लाइक अ फील गुड कंपेनियन एंड यू आर एंजॉयिंग इट थोरली, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सॉन्ग. तो अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. गाने का नाम है बावरे बाय ऋषि रॉय एंड विकेट सनी स्टारिंग कशिश रत्नानी. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: कह दूं

That was a song called Bavare by Wicked Sunny and Rishi Roy. One of those songs, मुझे पता है अब आप सुन के दो दोस्त को recommend करोगे कि इसको जरूर सुनना. At RJ Cunning on Instagram पर आओ, ऐसे कोई गाने हैं you want me to play next week, हमसे आके share करो. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. 21 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. गाने का नाम है शीशा, मिटर और की composition, उन्हीं की आवाज, also featuring स्वरा वर्मा. पिछले हफ्ते से एक position नीचे drop होके शीशा is playing right next for you on Gaana. Number 3. You're listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 3.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गाने हम आपके लिए लाते हैं। कनेक्ट विद मी, मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पर @RJKanika। कोई गाना बताना हो, कोई सजेशंस हो, बिंदास आके हिट मी। आप कोई सवाल है, बिल्कुल वी वेलकम इट @RJKanika पर बताओ। मैं और मेरे प्रोड्यूसर अशकाय, वी टेक योर सजेशंस, रिकमेंडेशंस वेरी वेरी सीरियसली। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज And the song we are going to feature this week is
2: Teri Deewani
1: गाने का नाम है तेरी दीवानी, कैलाश खेर की आवाज में बाय हिज बैंड कॉल्ड कैलासा। साल था 2000 एंड कैलाश खेर की आवाज वाज द मोस्ट बुलंद आवाज ऑफ दैट ईयर। अब इतनी पुरानी बात लगती है दैट आई वांट टू रियली पिक माय ब्रेन एंड थिंक दैट मैंने क्या सोचा था जब मैंने सबसे पहली बार कैलाश खेर की आवाज सुनी थी, बिकॉज इट साउंड सो अर्दी रॉ, कुछ कच्ची मिट्टी से जुड़ी हुई आवाज है उनकी। एंड दिस सॉन्ग वॉज एवरीवेयर। इस गाने की ब्यूटी मुझे ये लगती है दैट हर किसी के लिए तेरी दीवानी गाने का मतलब अलग है। किसी के लिए इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, इश्क वाला, प्यार मोहब्बत वाला, दैट आई एम ऑल अबाउट यू बेब, पर किसी के लिए ये गाना एक इबादत के जैसे है, अ डिवोशनल सॉन्ग। देन देयर आर आल्सो पीपल जिनके लिए एक सूफी गाने की तरह है, जहां प्यार और बंदगी में कोई फासला नहीं होता, जहां आप किसी इंसान को इतना चाहते हो दैट वो उस इंसान की ही इबादत करने लगते हो। यू माइट नॉट अग्री विद किसी और का वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ आर्ट ना, टू ईच देयर ओन। एंड तेरी दीवानगी कैलासा एग्जैक्टली वही गाना है। ये किसी एक बॉक्स में फिट ही नहीं हो सकता है। ये आप अपने दिल टूटने पर भी सुन सकते हो और किसी दिन सुकून ढूंढने के लिए भी। शादी में एक रोमांटिक गाने की तरह भी चल सकता है एंड अकेले कमरे में आंखें बंद करके भी ये गाना अच्छा लगता है। बट व्हाट्स कॉमन अमंगस्ट ऑल दीज थिंग्स इज इस गाने की कॉम्पोजिशन, कैलाश खेर की आवाज एंड व्हाट इट मेक्स यू फील। तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, कैलाश खेर की आवाज में कैलासा द बैंड का गाना दिस इज तेरी दीवानी ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय।

0: डूड, कैलाश खेर की आवाज में जो दर्द है इन तेरी दीवानी, वो दर्द सीधा कलेजे पे लगता है, दिल नहीं कलेजा। दैट वॉज तेरी दीवानी ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर। आओ 90s 2000s के वो गाने जो आज भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है हमसे आके शेयर करो। मैं और अशका आपके सारे गाने सारे रिकमेंडेशंस को ध्यान से देखते हैं। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। इस हफ्ते के काउंटडाउन में गाना नंबर 2 पर इज हर्ष नुस्सी का गाना साडी सुन। पिछले हफ्ते से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, आई स्वेयर आई एम नॉट इवन किडिंग, पांच भी नहीं, ये गाना पिछले हफ्ते से पूरे 7 पोजीशंस ऊपर उठ के दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक इज येट अगेन बैरन। बंजारे दे आर्टिस्ट का गाना 21 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैरन इज ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक, हर्ष नुस्सी का साडी सुन ऑन नंबर 2, बंजारे का बैरन ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: हो चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे लो

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
2: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची

0: Mirchi, it's hot.
1: Do to leki mundri lade, kin to leki.

इंडिपेंडेंस का अभी भी फीवर जारी है ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल दिखा। अब इंडिपेंडेंस से स्ट्रेट टू पैसा, बिकॉज आफ्टर ऑल उसके ऊपर ही तो सब डिपेंडेंट है ना। क्लब मिर्ची इट इज।

मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका के साथ. दिस प्लेलिस्ट इज मूविंग फास्टर देन योर वीकेंड क्रश. वी हैव केसरिया फॉर यू राइट नाउ. लेट्स गो.

मुकाबला डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका का विद क्लब मिर्ची बेबी। नो वी हेट लव स्टोरीज बट यू लव आई हेट लव स्टोरीज दैट्स व्हाट वी गोना प्ले ऑन क्लब मिर्ची लेट्स गो।

वादा किया था तो वापस तो आएंगे ही। क्लब मिर्ची वेलकम्स यू बैक, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंती का एक साथ। तो चलो सुनते हैं गाना, गाने का नाम वादा करो।

जाएंगे आप क्लब मिर्ची सुनते रहिए डीजे रिचर्ड मिर्ची और योमथिका आपके साथ। महबूब से ओम मंगलम बेसिकली द एंटायर इंडियन रिलेशनशिप जर्नी लव मैरिज।

मनपसंद गाना यहाँ पे ना मिला तो कहाँ मिलेगा। डीजे रिचर्ड मिर्ची ओयोंदिका आपके साथ। ये दिल है बदतमीज, स्पेशली ऑन अ सैटरडे नाइट। तो गाना तो वही बजेगा ना।

Question number one, what's the plan? Question number two, how much is going to cost? Question number three, okay, we'll figure it out. यहाँ पे गाने फ्री है, क्लब मिर्ची जा रही है, डीजे रिचर्ड मिर्ची और यौन टिका फॉर ऑल द जेंटलमैन एंड द लेडी. लेट्स गो.

0: जाओ।
1: अब बेशर्मी को कैसी शर्म, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑन सैटरडे नाइट बेशर्मी की हाइट हो ही जाती है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आई ऑन द

सैटरडे रॉक करना तो बनता है. वेलकम बैक रॉकर्स क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची ऑन योर दिका एंड बॉम्बे रॉकर्स इन द हाउस. द सॉन्ग इज कॉल्ड रॉक द पार्टी.

किंग, जो भी हमारे साथ सिंग करते हैं वही क्लब मिर्ची के किंग बनते हैं। डीजे रिचर्डन मिर्ची ऑयोन देगा आपके साथ बाकी बातें पीने बाद, बट पीने के बाद नो ड्राइविंग। क्लब मिर्ची।

अब मुंडा को तो बच के रहना ही पड़ेगा. Hotness just entered the club Mirchi party and that's DJ Richard Mirchi Oyontika. अगले गाने का नाम है सात समंदर. By the way, ये शो भी ब्रॉडकास्ट होता है सात समंदर. So longitude latitude जो भी हो, frequency तो मिल

अंग्रेजी बीट पे नाचेंगे एक साथ हम क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। लैला भी नाचेगी टुनाइट। एवरीवन इज द मेन कैरेक्टर।

नहीं नहीं नहीं लो जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता यार। वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योन देगा। सैटरडे नाइट एनर्जी हाई, सो एंजॉय व्हाइल योर बैटरी लास्ट्स। लेट्स गिव इट ऑल।

मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो उनते का पार्टी तो करवाएंगे मैं हूँ ना दैट्स ऑयो उनते का फॉर यू गाने का नाम है तुमसे मिलके हाँ हाँ मुझसे मिलके आपको अच्छा ही लगेगा विद मी अप ऑन माय सोशल्स इट्स AYANTIKA.

कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा यार, रिचर्ड आपके लिए इंतजार कर रहा है ऑन हिज सोशल्स, डीजे रिचर्ड ऑफिशियल। उनके म्यूजिक के नशे में ही तो आप झूमते हैं एवरी वीकेंड। सो गिव इट अप फॉर डीजे रिचर्ड।

फिर सारी दुनिया हिले। कांधे को आग चले बड़े न कोई मल्ले।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

0: The views expressed in the Devdutt Patnaik show are the hosts alone, not the channels.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
1: The Devdutt Patnaik show.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
3: Hi everyone, aap sun rahe hain The Devdutt Patnaik show on Radio Mirchi.
4: Devdutt ka day starter. Day starter.
3: तो इन द मॉर्निंग्स व्हेन यू वेक अप यू नो मूड नहीं होता है काम करने के लिए बट अगर फेस्टिवल डे होगा कोई उत्सव होगा देन वी वेक अप अर्ली बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि घर में बहुत एक्साइटमेंट होता है नए कपड़े होते हैं खाना होता है प्लान्स होते हैं पूजा पाठ होगा कुछ तो एक्टिविटी होगी गेस्ट आएंगे हम कहीं जाएंगे जो रूटीन होता है वो टूट जाता है आई रियली लव फेस्टिवल्स especially Indian festivals because हर फेस्टिवल में अलग अलग प्रकार का खाना बनता है एंड आई थिंक दैट इज वॉट रियली एक्साइट्स मी और नया कॉन्सेप्ट होता है यू नो दिवाली के टाइम हम लक्ष्मी के बारे में सोचते हैं दशहरे के टाइम हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सोचते हैं कंप्यूटर की पूजा करते हैं जब होली होती है तो रंग के बारे में सोचते हैं सो मेनी डिफरेंट आइडियाज कीप कमिंग सो जब उत्सव होता है तो उत्सव इज अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ और भारत उत्सवों का देश है यू नो इतने उत्सव होते हैं रोज रोज कोई ना कोई उत्सव होता है और अलग अलग जगह में अलग अलग उत्सव होते हैं उत्तर भारत में दक्षिण भारत में इतने उत्सव देवी देवताओं के उत्सव होते हैं पेड़ पौधों को लेके उत्सव होता है पशुओं को लेके उत्सव होता है पितरों को मतलब एंसेस्टर्स को लेके भी उत्सव होता है इतने उत्सव होते हैं यू नो इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यू नो जैसे बाइबल में कहते हैं कि यू नो God created the world in six days. On the seventh day, He rested. इसलिए हर हफ्ता एक holiday होता है. In amongst Muslims वो Friday होगा, Jewish लोगों में वो Saturday होता है, Christians में वो Sunday होता है. लेकिन ऐसा weekly holiday का concept Indian religions में नहीं है, Buddhism, Jainism and Hinduism में. यहाँ पे उत्सव कोई भी दिन मनाया जाता है, based on either some event that happened या कोई season variation या you know basically the climate has changed. तो राजा उत्सव डिक्लेयर करता था और हॉलिडे होता था तो देयर इज नो रिदमिक हॉलिडे इट इज इररेगुलर कभी भी आ सकता है कभी भी जा सकता है एक पूरा सीजन होता है जब आप ज्यादा फेस्टिवल नहीं करते हो जिसको चातुर्मास कहते हैं रेनी सीजन का सो आई थिंक फेस्टिवल्स आर अ ग्रेट थिंग टू डिस्कस नॉट अ स्पेसिफिक उत्सव बट जनरली उत्सव का मतलब क्या है वॉट डज इट मीन वॉट इज इट्स सिग्निफिकेंस क्यों करते हैं हम लोग वॉट इज इट्स वैल्यू इन आर लाइव सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज वंडरफुल थिंग्स ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची
2: द देवदत्त पटनायक शो
0: मदन उत्सव और वैलेंटाइन्स डे में क्या है सिमिलैरिटी बताएंगे देवदत्त कीप लिसनिंग

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
1: कल भी आज भी
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम श्योर यू थिंकिंग ऑफ व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल, एंड फेस्टिवल्स आर देयर ऑल द टाइम। कल भी फेस्टिवल्स थे, आज भी फेस्टिवल्स हैं। पहले जमाने में भी फेस्टिवल्स होते थे, अलग अलग फेस्टिवल्स होते थे, और आज भी नए नए फेस्टिवल्स होते हैं, उनका रूप बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जमाने अगर आप कालिदास की कविताएं पढ़ें तो वहां पे मदनोत्सव होता था। मदन मतलब कामदेव, गॉड ऑफ लव, और वी यूज्ड टू सेलिब्रेट द गॉड ऑफ लव। तो मदनोत्सव होता था वसंत उत्सव में इन स्प्रिंग टाइम, और गणिकाएं नाचती थी। ऑल द गर्ल्स वर इनवाइटेड टू द किंग्स गार्डन, राजा के जो गार्डन था वहां पे उनको बुलाया जाता था, वहां पे खाना पकता था। दे वुड सिंग एंड डांस एंड प्ले ऑन स्विंग्स, और मजा करते थे, कामदेव की पूजा करते थे कि हमारी जिंदगी में भी प्रेम आ जाए, लव आ जाए। सो इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लव। आजकल हम मदनोत्सव को नहीं मानते हैं, लेकिन वी टॉक अबाउट वैलेंटाइंस डे। ऑफ कोर्स सम पीपल गेट वेरी एंग्री, वैलेंटाइंस डे पाश्चात्य है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, एंड आई कीप सेइंग अरे ये मॉडर्न वर्जन ऑफ मदनोत्सव ही है, कामदेव की पूजा है। यू नो होली इज ऑल्सो सेट टू बी रिलेटेड टू मदनोत्सव, वसंतोत्सव। अगर आप जितने भी ओल्ड काव्य पढ़े, संस्कृत काव्य, वहां पे मदनोत्सव के बारे में बहुत बताया गया है। फेस्टिवल ऑफ लव, वी सेलिब्रेट लव, वी शुड ऑलवेज सेलिब्रेट लव, कल भी आज भी। आई थिंक एवरी डे शुड बी मदनोत्सव, नॉट जस्ट ऑन सम डेज। सो एवरी डे वी शुड सेलिब्रेट लव एंड वी शुड हैव अ गुड टाइम, बट इफ यू कांट, एट लीस्ट वंस इन अ ईयर सेलिब्रेट लव। थिंक अबाउट द पर्सन हू लव्स यू एंड होप दैट यू आर लव्ड इक्वली। ऐसी ही बातें हम डिस्कस करेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो, जहां पे हम वेद पुराण आख्यानों के बारे में डिस्कस करते हैं और उनका रेलेवेंस इन आवर डे टू डे लाइफ ढूंढते हैं।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: राम कृष्ण के जन्मदिन तो मनाए जाते हैं, पर शिव का क्यों नहीं, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: तो आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। हर देवी देवता का एक उत्सव होता है और उत्सव के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। सो स्टोरीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन उत्सव। जैसे जब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं लोग, तो हम कहते हैं कि जीसस का जन्म हुआ था, सो दैट इज व्हाई क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड। जब ईस्टर की बात होती है तो लोग कहते हैं कि जीसस रेजरेक्टेड हिमसेल्फ। यू नो, रमजान इज अ फेस्टिविटी व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द कुरान वाज बीइंग नरेटेड सो फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो मंथ को रमजान कहते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी, समहाउ स्टोरी इज रिलेटेड टू ए फेस्टिवल। कृष्ण जन्म की एक उत्सव होती है, राम जन्म का एक उत्सव होता है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा शिव का जन्म के बारे में कोई फेस्टिवल नहीं होता, या दुर्गा देवी के जन्म के बारे में, बिकॉज ये स्वयंभू है, ये अनंत है, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट। उनका कभी जन्म नहीं हुआ है, उनका मरण नहीं हुआ है, दे वर नेवर बॉर्न, दे विल नेवर डाई, वो अमर हैं, दे आर ऑलवेज देयर। तो वी विल नेवर टॉक अबाउट शिवा बीइंग बॉर्न, वी विल नेवर टॉक अबाउट देवी बीइंग बॉर्न और विष्णु बीइंग बॉर्न, बट वी विल टॉक अबाउट राम का जन्म के बारे में, कृष्ण के जन्म के बारे में। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया कि देखो कैसे कहानियों के माध्यम से एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है। ऑफकोर्स शिव की पूजा होती है, शिवरात्रि होता है, शिवरात्रि फेस्टिवल होता है, तो ये फेस्टिवल किसके लिए होता है? कहते हैं कि उस दिन शिव जी की शादी हुई थी, दैट इज वाई शिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। सो इट इज रिलेटेड टू हिज मैरिज, नॉट टू हिज बर्थ और एनीथिंग। सो अलग अलग स्टोरीज होते हैं। जब हम उत्सवों के बारे में बात करते हैं, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस स्टोरीज विद आवर चिल्ड्रन, विद आवर फ्रेंड्स, कि आज ये फेस्टिवल क्यों मनाया जा रहा है। ऑफ कोर्स फेस्टिवल्स आर नॉट ऑलवेज रिलीजियस, देयर कैन बी आल्सो सेक्युलर फेस्टिवल्स। जैसे हार्वेस्ट टाइम में जब हार्वेस्ट होता है, तो जैसे लोहड़ी होती है, मकर संक्रांति होता है, दीज आर नॉट रियली रिलीजियस फेस्टिवल्स, दीज आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल साइकिल्स, क्रॉप साइकिल्स, हार्वेस्ट टाइम, सोइंग द सीड, तो लोग फेस्टिवल्स मनाते थे। जब टैक्स कलेक्शन खत्म हो जाता है तो एक फेस्टिवल मनाया जाता है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स, नॉट एवरीथिंग इज रिलीजियस। जैसे हमारे इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, देयर आर रिलीजियस फेस्टिवल्स, दीज आर पॉलिटिकल फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स रिलेटेड टू सेक्युलर आइडियाज लाइक नेशन स्टेट। बर्थडेज आर ऑल्सो नॉट रिलीजियस फेस्टिवल, बट दे आर फेस्टिवल्स। सो ऑन द बर्थडे यू आर सेलिब्रेटेड बाय योर फ्रेंड्स, सो दैट इज ऑल्सो ए उत्सव। ऐसे ही बातें अबाउट फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स एंड सिंबल्स एंड प्रैक्टिसेस हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: द देवदत्त पटनायक शो। आज फेस्टिवल्स में बाजार हैं या बाजार में फेस्टिवल्स, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

काशीपुरपतिं भज विश्वनाथं भूताधिपं भुजगभूषण भूषितांगं व्याघ्राजिनांबरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशांकुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची, जहाँ पे हम फेस्टिवल के ऊपर बात कर रहे हैं।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: नाउ इज द टाइम फॉर क्वेश्चंस, सो कॉल इन, आई एम वेटिंग।
3: हाय देवदत्त, मैं हितेश बोल रहा हूँ। मुझे ये जानना था कि फेस्टिवल्स पर मार्केट ज्यादा हावी होता जा रहा है, ओरिजिनल स्टोरीज तो जैसे गायब ही हो गई है, इस पर आपका क्या कहना है?
0: थैंक यू हितेश, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फेस्टिवल्स की शुरुआत हमेशा अध्यात्म से शुरू होता है या एग्रीकल्चरल फेस्टिवल से शुरू होता है, कोई इवेंट से शुरू होता है, धीरे धीरे धीरे बाजार उसमें आ जाता है, मार्केट बिकम्स इम्पोर्टेंट,
3: राइट?
0: बिकॉज ज्यादातर क्या खाना मिलेगा, क्या गिफ्ट्स मिलेंगे, क्या पार्टी करेंगे, ये फोकस हो जाता है। ऑल फेस्टिवल्स हैव एन इकोनॉमिक बेसिस, सो फेस्टिवल का पर्पस इज टू स्पेंड मनी एंड क्रिएट एक्सचेंज। आप देखेंगे जहाँ पे तीर्थ यात्रा होता है वहाँ पे मेले भी होते हैं। तीर्थ यात्रा, बाजार और मेला का बहुत क्लोज संबंध है। तो पूजा पाठ के साथ बाजार हमेशा साथ में रहेगा। मंदिरों के बाहर बाजार होता है, चर्च के बाहर बाजार होता है, लोग जब मस्जिद जाते हैं तो बगल में आप देखेंगे फूड स्टॉल्स होंगे क्योंकि फैमिली जाती है वहां पे। सो इट इज एन इकोनॉमिक स्पेस, सो वी शुड नॉट रिजेंट इट। ये होता है, इट्स ओके। अभी देखिए ना, जैसे क्रिसमस में ज्यादातर लोग जीसस क्राइस्ट की बात नहीं करते, सेंटा क्लॉज के बारे में ज्यादा बात करते हैं। सेंटा क्लॉज तो कंप्लीटली कमर्शियल है, उसके आध्यात्म ईसाई धर्म के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। गिफ्ट्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं हम लोग, थैंक्स गिविंग डे के बारे में हम ज्यादातर, टर्की के बारे में लोग बात करते हैं, अमेरिका में लोग नहीं बात करते कि वो थैंक्स गिविंग है क्या, क्या इतिहास था। सो दिस इज एवरीवेयर, दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। और ऑफकोर्स आजकल जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, हैज बिकम सो पावरफुल एंड मनी हैज बिकम सो पावरफुल दैट वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग बियॉन्ड मनी। वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग, शादी भी संस्कार नहीं रहे, अभी तो थिएटर बन गया है, नाच गाने का थिएटर बन गया है, वेयर हस्बैंड वाइफ इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैरिड आर फोकसिंग ऑन डांसिंग इन फ्रंट ऑफ गेस्ट्स। होता है, समय के साथ सब कुछ बदलता है, वी आर इन अ डिफरेंट टाइम, मे बी वी हैव अ लॉट ऑफ मनी राइट नाउ, बट धीरे धीरे धीरे करके जब लाइफ का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, जब हम अर्थ ढूंढने लगते हैं अपने जीवन में, तो हम सेलिब्रेशंस को छोड़ के उनके पीछे रहस्य जो है उसे ढूंढते हैं। यू कैन टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस एंड शेयर द आइडियाज अबाउट फेस्टिवल जो हम देवदत्त पटनायक शो में डिस्कस करते रहते हैं ऑन मिर्ची, एंड एनकरेज देम टू लिसन टू द शो, सो दे विल रियलाइज कि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट सेलिब्रेशंस, इट इज ऑल्सो अबाउट थिंकिंग, विचार, भाव, रस, बहुत चीज होते हैं फेस्टिवल्स में, नॉट जस्ट मनी।
3: इट वॉज रियली हेल्पफुल सर, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू हितेश।
1: On Radio Mirchi,
2: The Devdutt Patnaik Show.
4: क्यों बदलती हैं फेस्टिवल्स की डेट्स? क्या है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष? बताएंगे देवदत्त। Keep listening.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची,
1: जहां पे आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं, फन फ्रॉलिक फ्रॉम अ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू।
2: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
3: द देवदत्त पटनायक शो,
2: द देवदत्त पटनायक शो
3: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: तो ज्यादातर अगर आप मंदिर में जाएं तो मंदिरों में रोज एक ना एक फेस्टिवल होता है। बनारस में एक फेमस कहावत है कि 7 दिन में 9 त्योहार होते हैं। सो यू नो वी हैव दिस विच इज द कल्चर ऑफ फेस्टिवल्स। सो मोस्ट फेस्टिवल्स हैपन ऑन द वैक्सिंग मून टाइम। वेरी फ्यू फेस्टिवल टेक प्लेस इन द कृष्ण पक्ष और द वेनिंग मून, जब द मून इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, अमावास की तरफ जाते हैं। सम ऑफ दोस फेस्टिवल्स आर जैसे कृष्ण जन्म, कृष्ण जन्म का फेस्टिवल इज इन कृष्ण पक्ष, महाशिवरात्रि इज इन कृष्ण पक्ष, और इनफैक्ट हर महीने एक शिवरात्रि होता है, जस्ट बिफोर अमावास के दिन शिवरात्रि होता है। महाशिवरात्रि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिवरात्रि, लेकिन हर महीने एक शिवरात्रि होता है। ट्रेडिशनली शुक्ल पक्ष को ज्यादा वैल्यू दिया गया था और कृष्ण पक्ष को कम वैल्यू दिया जाता है। और वन ऑफ द स्टोरीज इज दैट देवासुर में जब संग्राम हुआ था तो ब्रह्मा ने कहा कि जो शुक्ल पक्ष होगा वो देवताओं के साथ जुड़ा होगा और जो कृष्ण पक्ष होगा वो असुरों के साथ जुड़ा होगा। जब उत्तरायण होता है तो वी मूव फ्रॉम स्प्रिंग टू समर टूवर्ड्स रेन्स, दक्षिणायण में वी मूव फ्रॉम द रेनी सीजन टूवर्ड्स विंटर टूवर्ड्स स्प्रिंग। तो वहां पे भी डिविजन हो गया था कि देवता उत्तरायण में बैठते हैं और असुर दक्षिणायण में बैठते हैं। ऐसे द वर्ल्ड इज बीइंग चर्न्ड, एक मंथन हो रहा है। सो फेस्टिवल्स आर आल्सो रिलेटेड ऑलवेज विद एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स associated with astronomy, मतलब तिथि, phases of the moon, seasons, उत्तरायण दक्षिणायण, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तारे कहाँ पे हैं, जैसे कुंभ मेला will be associated with the Aquarius constellation, तो stars, planets, seasons, moon, movement of the sun, all of this play a very important role in festivals. इसलिए festivals के date बदलते रहते हैं lunar calendar के हिसाब से। solar calendar के कुछ festivals होते हैं जैसे मकर संक्रांति, वो हमेशा every year January 14th को ही आएगा because it's a solar festival, लेकिन दिवाली दिन will keep shifting because it's a lunar festival. So whenever you discuss festivals, remember to look at the calendar. It is a great way to explain to children calendar, अपने दोस्तों के साथ कि nature में क्या हो रहा है, what is happening to the sun, what is happening to the moon, what is happening to the stars. Our festivals teach us about astronomy. तो अगर school में नहीं पढ़े हो तो at least festival के time पे तो सीखो, and these are the kind of things that you must grab from the Devdutt Patnaik show on Mirchi. Share it with your friends, show off with your friends and encourage them to listen to the Devdutt Patnaik show on Mirchi.
2: Devdutt on Radio Mirchi.
3: The Devdutt Patnaik show.
4: Kiski hai Diwali? Ram ki, Krishna ki ya Lakshmi ki? Kyun hai controversy? Batayenge Devdutt. Keep listening.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं। भारत उत्सवों का देश है। वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स, वेदर इट इज हिंदू फेस्टिवल्स, बुद्धिस्ट फेस्टिवल, जैन फेस्टिवल, क्रिश्चियन फेस्टिवल, सिख फेस्टिवल्स, मुस्लिम फेस्टिवल्स, सेक्युलर फेस्टिवल्स, एथियस्ट फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल, हमको बहाना चाहिए फॉर पार्टिंग। और फेस्टिवल्स हमारा सांस्कृतिक पार्टी होता है। बट यू नो nowadays ऑफ कोर्स सबको कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है, सो नाउ देर आर कॉन्ट्रोवर्सीज अबाउट ये फेस्टिवल किसके लिए मनाया जाता है। सो आई ऑलवेज गेट दिस क्वेश्चन। दिवाली के टाइम में एक स्टोरी है। अगर आप बोले दिवाली हम क्यों मनाते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, तो लोग कहेंगे कि लक्ष्मी के लिए हम मनाते हैं दिवाली, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन होता है दिवाली के दिन पे, एंड लक्ष्मी आ रही है इसलिए हम दीप जलाते हैं ताकि वो हमारे घर आए। लिए लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये राम जी ने अयोध्या आए थे इसलिए हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ राम, इट इज नथिंग टू डू विद लक्ष्मी, और क्योंकि राम आ रहे हैं उनके साथ लक्ष्मी आ रही है। तो राम भक्त लोगों के वो बोलेंगे अलग आइडिया, जो लक्ष्मी भक्त हैं, जो वणिक समाज है, द ट्रेडर्स विल से नहीं नहीं लक्ष्मी की पूजा है। और एक ग्रुप आ जाता है, श्री कृष्ण वाले बोलेंगे कि नहीं नहीं, यहाँ नरक चतुर्दशी होता है तो नरकासुर को श्री कृष्ण ने वध किया था इसलिए हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो सच क्या है बताइए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, बलि प्रतिपाद होता है, मतलब यहाँ पे ऑन दिस डे वामन ने बाली को जमीन पाताल लोक में भेज दिया था, तो मे बी दैट इज द रियल स्टोरी। तो इतने स्टोरीज में भी मेरा ये विश्वास है कि दिवाली फेस्टिवल सबको इतना पसंद है तो अपने फेवरेट गॉड की स्टोरी उन्होंने थोप दी, एंड वी ऑल बिलीव इट। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? जितने स्टोरीज उतना मजा। Why do we want एक ही स्टोरी होना चाहिए? हमारा देश, we are a diverse country, विभिन्नवाद वाला देश है, तो जिसे राम की स्टोरी सुनना है उन्हें राम की स्टोरी सुनने दीजिए, जिनको कृष्ण की स्टोरी सुनना है उन्हें कृष्ण की स्टोरी सुनना है, जिनको विष्णु की स्टोरी सुनना है वो विष्णु के बारे में सुनेंगे, जिसको लक्ष्मी के बारे में सुनना है वो लक्ष्मी के बारे में सुनेंगे। भाई बहन कहेंगे कि नहीं भाई दूज, दिवाली इज ओनली अबाउट भाई दूज। सो यू नो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट अ फेस्टिवल, एंड आई थिंक वी शुड स्टे अवे फ्रॉम कॉन्ट्रोवर्सीज, वी शुड एंजॉय द स्टोरीज, फोकस ऑन द पॉजिटिव, स्टे अवे फ्रॉम दीज नेगेटिव। फेस्टिवल इज अबाउट पॉजिटिव एनर्जी, मांगल्य, घर में शुभ आना चाहिए, लाभ आना चाहिए। दीज आर द आइडियाज दैट वी विल डिस्कस ऑन द देवदत्त पटनायक शो। वी कीप टेलिंग यू स्टोरीज हमारे संस्कृति के बारे में, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर कल्चर, सो दैट यू कैन शो ऑफ विद योर फ्रेंड्स अबाउट हाउ मच यू नो अबाउट इंडियन कल्चर। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, पिक अप द फोन एंड आस्क। मैं आपके क्वेश्चंस के लिए वेट कर रहा हूं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। सो आई एम वेटिंग।
1: ऑन रेडियो मिर्ची
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: दिवाली पर पटाखे जलाना सही या गलत, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: आज हम हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो,
1: ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो,
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे, सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन हनुमान। पिक अप द फोन राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।
3: हेलो
0: हेलो देवदत्त हियर।
3: हेलो देवदत्त सर।
0: Hi.
3: Hi, मेरा नाम भास्कर है एंड आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स।
0: थैंक यू सो मच।
3: और मेरा एक क्वेश्चन था
0: जी
3: हनुमान को लेके।
0: तो
3: हनुमान जी की जाति को लेके कंट्रोवर्सी हुई है, क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
0: देखिए, जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है एंड यू नो वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली। हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचा की बात नहीं होती। हनुमान जी इज वानर और वो महाबली हैं एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पोलिटिकल गेम्स दैट आर बींग प्लेड। आई पर्सनली कीप अवे, जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ जात पात की बातें नहीं होती। जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ जात पात शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं। तो हमारे शो में हम ज़्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, वी डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस जाती है, सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस। ये पॉलिटिक्स होने दो ना शास्त्रों में। या सो दैट्स, आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st सेंचुरी इंडियंस एंड दैट्स माई सजेशन। बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। तो हनुमान विद्वान है, बलवान है, और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है, जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता।
1: ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो। क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

मिर्ची इट्स हॉट। गायत्र्यास्तु परम नास्ते, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है। जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है, उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरण।

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातः त्राहि माम शरणागतम। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौर मंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा दो।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यार, हनुमान जी के बारे में कितना बताना है आपको, लेकिन क्या करें, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। शो अभी खत्म होने वाला है। और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है, जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज अ गॉड हु इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी के वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते रहे। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए #devdattonmirchi devdutt onmirchi और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244। मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: द व्यूज एक्सप्रेस्ड इन द देवदत्त पटनायक शो आर द होस्ट्स अलोन, नॉट द चैनल्स।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: आजकल फिल्म देखने के बाद सबसे डेंजरस सवाल ये नहीं है कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, सबसे डेंजरस सवाल है कि मुझे इसे देखना क्यों चाहिए था, क्योंकि ऑडियंस बदल गई है। अब सिर्फ बड़ा स्टार काफी नहीं है, सिर्फ बड़ा बजट काफी नहीं है, सिर्फ VFX का शोर भी काफी नहीं है। कहानी में कुछ तो होना चाहिए, कुछ ऐसा जो स्क्रीन बंद होने के बाद भी दिमाग में चलता रहे। और शायद इसलिए हिंदी सिनेमा के बीच का वो खाली स्पेस फिर से भर रहा है। कभी एक पुरानी याद नई आवाज बनकर लौट जाती है, कभी एक छोटी सी कहानी बड़े पर्दे को चैलेंज कर देती है, और कभी बॉलीवुड हमें रोमांस के नाम पर ऐसे ऐसे लॉयल्टी टेस्ट दे रहा है कि हम खुद सोच रहे हैं भाई थेरेपी लेनी पड़ेगी क्या। तो इस हफ्ते फिर देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या टिक रहा है, और सबसे जरूरी क्या याद रह रहा है। हाय, मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड वी किक स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉन्ग जो है गाना नंबर 20, राघव जुयाल की भाई तेरा स्टार है का ट्रैक बाय अमित त्रिवेदी। दिस इज रंग बरसे
3: नंबर 20।

शायद 2026 में धुरंधर एक गहरी याद बन के रह जाए, लेकिन जब मेरी जेनरेशन थोड़ी केयरफ्री थी और जिम्मेदारियां उतनी भारी नहीं फील होती थीं, तब भी एक याद थी। तीन दोस्त, एक गाड़ी और स्पेन की सड़कें, और सामने पूरी जिंदगी। 2011 में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ने हमें यही तस्वीर दी थी। अर्जुन को समंदर में उतरना था, इमरान को अपने अंदर का डर खत्म करना था, और कबीर को अपनी जिंदगी का फैसला करना था। और हम सिनेमा हॉल से निकले तो लगा कि हाँ यार, जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए। फिर 15 साल निकल गए। वो तीन दोस्त तो स्क्रीन पर कहीं रुक गए, लेकिन हम नहीं रुके। हमारे बाल बदले, चेहरे बदले, दोस्तियों के बीच नए नाम आ गए, कुछ लोग शादी तक पहुंच गए, कुछ सपने रस्ते में रह गए। और शायद इसलिए, अगर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल कभी आता भी है, तो मुझे यार स्पेन की एक और रोड ट्रिप नहीं चाहिए। मुझे देखना है कि उन तीन दोस्तों के साथ जिंदगी ने क्या किया, क्योंकि पहली फिल्म में तो वो जिंदगी को ढूंढने निकले थे, लेकिन अब शायद जिंदगी उन्हें ढूंढने आ गई है। नंबर 18 पर है चटनी धमाल 4 से, बट जिस ट्रिप पर निकले हैं उसे पूरा करते हैं। वो ट्रिप जिसकी हवा आज भी चलती है, ख्वाबों के परिंदे। शायद इस बार हम स्पेन नहीं देख रहे, शायद हम खुद को पीछे मुड़कर देख रहे हैं।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 17
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़े मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो। क्या?

रात लंबी हो जाए ना तो आदमी अक्सर दो चीजें करता है, पुरानी बातों को पढ़ता है और पुराने गाने सुनता है। क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम किसी को बता नहीं पाते, बस एक गाने में पहचान लेते हैं। और शायद इसलिए पिछले दो दशकों से हमारे हार्ट ब्रेक की आवाज में एक नाम बार बार सुनाई देता है, सईद कादरी। कभी किसी के होने की ख्वाहिश,

0: सईद कादरी, तो फिर आओ तेरा मेरा रिश्ता, जरा सा हाले दिल। इमरान हाशमी की फिल्मों में तो जैसे उनकी कलम ने एक पूरी दुनिया बना दी, लेकिन बात सिर्फ इमरान की नहीं है, आपकी है, मेरी है, हम सबकी है, क्योंकि हमने उनके अल्फाज को अपनी कहानियों में लगा लिया, अपनी रातों में उन्हें गुनगुना लिया। बस जिस आदमी ने वो अल्फाज लिखे उसका नाम कहीं पीछे छूट गया। तो याद रखना, ये सारे जज्बात जो इन गानों में हम महसूस करते हैं, ये देन है सईद कादरी के। नंबर 15 पर इस बार है टॉक्सिक का ये गाना मदहोश।
1: नंबर 15

हमारी आरी नंबर 13 पर है और धुरंधर ने एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। जब कहानी इतनी बड़ी हो कि दो फिल्में भी छोटी पड़ जाएं, तो मीडियम का फैसला कौन करे। धुरंधर को दो फिल्में मिली, तीन तीन चार चार घंटे लंबी, फिर भी लगा यार और है, और यही तो सिनेमा का असली जुगाड़ है। कभी कभी फिल्म मेकर के पास कहानी होती है लेकिन मीडियम उसकी गर्दन पकड़ लेता है। अब फाइटर को देखिए, ऋतिक रोशन, एयरफोर्स, सिद्धार्थ आनंद, फाइटर जेट्स, पाकिस्तान से जंग और वो स्केल, सब कुछ आंखों के लिए बना था लेकिन कहानी ने दिल को पकड़ा ही नहीं। और फिर आती है एक वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर। इसमें कोई सुपरस्टार नहीं, कोई थिएटर का शोर नहीं, कोई बजट की ब्रेकिंग न्यूज नहीं, लेकिन कारगिल की वो कहानी जो स्क्रीन पर हवा में उड़ती है ना, आप देखते नहीं हो, आप उसमें खो जाते हो। बस यही फर्क है, ओटीटी हो या सिनेमा, मीडियम कहानी का साइज तय नहीं करता, कहानी मीडियम तय करती है। क्योंकि वीएफएक्स आंखों को रोक सकता है, स्टार्स आपको थिएटर तक ला सकते हैं, लेकिन कहानी ही आपको कुर्सी से बांध के रख सकती है। बाकी सब एपेटाइजर हैं, मेन कोर्स में अगर दम नहीं है तो प्लेट कितनी भी महंगी क्यों ना हो, मजा नहीं आता। ऑपरेशन सफेद सागर अब ओटीटी पर स्ट्रीम कर रही है, एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड इट तो टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना। खैर, मूविंग टू गाना नंबर 12, अच्छे गाने का बुरा रीमेक, आंखों से तूने क्या कह दिया फ्रॉम राघव जुयाल फिल्म भाई तेरा स्टार है। नंबर 12।

0: माशूका, एक ऐसा गाना जो सुनते ही बॉलीवुड रोमांस की पुरानी आदत याद आ जाती है। लेकिन कुछ फिल्म्स की आदत नहीं होती, उनसे उम्मीद होती है। कुछ महीनों पहले जावेद अख्तर साहब ने बंटवारा 1947 को लेकर एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर एक्सपेक्टेशंस सीधा आसमान तक पहुंच गए थे।
1: एक प्रेडिक्शन में करना चाहिए, आई नो आई एम पुटिंग माय नेक आउट ऑन द ब्लॉक, मगर मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा वेन हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन राइट, इफ आई हैव नॉट लाइक द पिक्चर, दैट पिक्चर इज नॉट ट्रू। मैं आपको बताता हूँ, एक पिक्चर आने वाली है जो चाहे मल्टीप्लेक्स हो और चाहे ऑडियंस हो सिंगल, उसमें वो पिक्चर चलेगी और लोगों को पसंद आएगी। वो पिक्चर इस वक्त ये बना रहे हैं, मैं आई एम पुटिंग माय नेक ऑन द ब्लॉक। मुझे मालूम है कि आप लोग भूलेंगे नहीं, मगर जब मैं सही साबित हूँ तो सलाम करने आइएगा।
0: अब जरा सोचिए, आमिर खान एज प्रोड्यूसर, राजकुमार संतोषी डायरेक्टिंग अ फिल्म आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा एज द कास्ट, जावेद साहब के लिरिक्स और ए आर रहमान का म्यूजिक। यार ये कॉम्बिनेशन फिल्म नहीं है, ये एक इवेंट है। और फिर वो फिल्म आती है और उसका म्यूजिक भी आता है, और एक अजीब सी चीज होती है, कुछ भी पीछा नहीं करता। ना वो एक मुखड़ा जो दिमाग में अटक जाए, ना वो एक लाइन जो आप किसी दोस्त को भेजें, ना वो एक गाना जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ घर आए। और मुझे इसलिए हैरानी नहीं है कि बंटवारा 1947 का कोई गाना एक सुपरहिट गाना नहीं बना, या शायद मिर्ची टॉप 20 पर नहीं आया। मुझे हैरानी है कि एआर रहमान और जावेद अख्तर की फिल्मोग्राफी से निकला हुआ एक भी गाना अभी तक मेरी यादों में जगह नहीं बना पाया। हो सकता है कि वक्त बदले, हो सकता है दैट दिस एल्बम ग्रोज ऑन मी, हो सकता है कि कोई गाना धीरे धीरे अपना रास्ता बना ले, लेकिन तब तक मैं उस एक गाने का इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग। और जब बात आमिर खान और एआर रहमान की हो, तो एक वक्त था जब दोनों ने ऐसे गाने दिए थे जो आज भी बिना किसी इंट्रोडक्शन के दिल में उतर जाते हैं। माई रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्रैक्स एवर, तू बिन बताए, रंग दे बसंती से।
2: टॉप 20 रीवाइंड।

0: Mirchi, it's hot. Sureen ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 10.

तेरा मेरा रिश्ता, एक गाना जो दो जेनरेशंस को एक ही फीलिंग में बांध रहा है। और शायद इसलिए आवारापन 2 की कहानी मुझे सिर्फ एक सीक्वल की कहानी नहीं लगती, मुझे लगता है ये सिनेमा के एक खोए हुए हिस्से की वापसी है। एक वक्त था जब हिंदी सिनेमा में एक हेल्दी मिडिल क्लास हुआ करता था। क्वीन, कहानी, पीकू, हिंदी मीडियम, बधाई हो, बरेली की बर्फी, ना सबसे बड़ा स्टार जरूरी था, ना सबसे बड़े सेट, बस कहानी में दम होना चाहिए था। फिर OTT आया और पहले तो लगा कि वाह यार, अब हर कहानी को जगह मिलेगी। लेकिन फिर ये OTT प्लेटफॉर्म सिलेक्टिव हो गए और थिएटर्स का स्केल

आ गया और बीच में एक अजीब सी खाली जगह बन गई। ना फिल्म इतनी बड़ी कि थिएटर में एक इवेंट बन सके, ना इतनी ज्यादा सेफ कि ओटीटी उसे उठा ले। और शायद इसलिए राइटर्स ने भी वो कहानियां लिखना कम कर दिया। लेकिन देखिए आवारा पंटू को, कोई दुनिया बचाने नहीं आ रहा, बस एक कहानी है, इमोशन है, कैरेक्टर्स हैं और ऑडियंस उसमें फिर से घर बना रही है। इसी काउंटडाउन में गाना नंबर 9 है धुरंधर का शरारत। और धुरंधर स्केल में बहुत बड़ी थी, लेकिन एट इट्स वेरी कोर उसमें एक कहानी थी और इसलिए ऑडियंस उसके साथ चली। बड़ी फिल्में प्रॉब्लम नहीं है, खाली फिल्में प्रॉब्लम है। शायद ऑडियंस ने मिडिल को रिजेक्ट नहीं किया, शायद हमने मिडिल बनाना ही छोड़ दिया। लेकिन अब नंबर 8 पर है कॉमेडी फिल्म, टिपिकल फिल्म, धमाल 4 का ये गाना कॉल्ड सारी। नंबर 9।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 7.

0: अपनी इस फिल्म टॉक्सिक के साथ यश ने एक बात तो क्लियर कर दी है, बच्चों को फिल्म से दूर रखिएगा। लेकिन इसी यश के सामने अब एक ऐसा किरदार है जिसे बच्चे भी जानते हैं और बड़े भी जानते हैं, शायद पूरा देश अपनी अपनी नजर से जानता है, रावण। रामायण में राम को महान बनाने के लिए सिर्फ राम का अच्छा होना काफी नहीं था, सामने रावण भी ऐसा होना चाहिए था जिसे हराना एक वक्त पर नामुमकिन लगे, और यश ने इसी बात को समझा है। रजत शर्मा जी के शो आपकी अदालत में जब उनसे पूछा गया कि राम बनने के बजाय अब रावण क्यों बने, तो यश ने जवाब कुछ ऐसा दिया।
1: राम का भलाई दिखाने के लिए रावण का बुराई भी चाहिए सर, मुझसे अच्छा कोई दिखा नहीं सकता सर, अच्छाई में मैं भी करूंगा ना, वहाँ पे भी मुझे उतना ही कॉन्फिडेंस है, मुझसे अच्छा भी कोई नहीं दिखेगा सर। बट दिस फिल्म नीड्स अ सिचुएशन कि इसको कैसे मारे यार, तभी है ना रामायण। रामायण में लगे कि इसका ही कैन नॉट डाई, इसका उसके पास बून है, उसके पास सब है, उसके बाद प्रभु श्री राम उसको हराते हैं।
0: यार कॉन्फिडेंस तो है लेकिन बात में लॉजिक भी है, क्योंकि रामायण की सबसे बड़ी कहानी शायद यही है, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो उसका अंत हमेशा होता है। अब सवाल यह है कि नितेश तिवारी की रामायण उस कहानी को हमारे लिए दोबारा कैसे जिंदा करती है, और म्यूजिक वो तो पूरी दुनिया बनाएगा भी और सजाएगा भी। ना अनफॉर्चुनेटली नंबर 6 पे जो गाना है चुनरी चुनरी, उसने एक अलग दुनिया बनाने की कोशिश तो की लेकिन इट डिडंट सक्सीड, और वैसे ही रामायण के गाने होपफुली हमें उस युग में ले जाएंगे। लेकिन अब काउंटडाउन में है आवारापन की दुनिया, नंबर 5 पर सुबोध शर्मा की आवाज में दिस इज वे जुनून। नंबर 5।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 4।

16 साल से रिलेशनशिप में हो, साथ रहते हो, खुश हो, शादी की जरूरत भी महसूस नहीं होती। एंड फिर बॉलीवुड कहता है एक काम करते हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने ही बॉयफ्रेंड को पटाने के लिए कन्विंस करते हैं, लॉयल्टी टेस्ट करवाते हैं। वेलकम टू कॉकटेल 2 विथ रश्मिका मंदाना एज दिया, कृति सैनन एज एली एंड शाहिद कपूर एज कुणाल। एंड ऑनेस्टली दिया, 2026 है, थेरेपी नाम की भी एक चीज होती है। लेकिन कॉकटेल 2 का प्रॉब्लम सिर्फ इतना नहीं है कि इसकी असली लव स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड को कॉम्प्लिकेटेड और टॉक्सिक के बीच का फर्क आता ही नहीं है। दे फॉरगॉटन अबाउट इट। जेलसी को पैशन बना दिया है, पोजेसिवनेस को प्यार, स्टॉकिंग को पर्सिस्टेंस और मैनिपुलेशन को रिलेशनशिप टेस्ट। कभी कभी चीटिंग को भी ट्रू लव कह दिया जाता है। और हम देखते रहते हैं क्योंकि स्क्रीन पर दो खूबसूरत लोग अगर खड़े हो, बैकग्राउंड में एक बड़ा सा रोमांटिक गाना बज रहा हो, तो हम हर रेड फ्लैग को गुलाबी चश्मों से देखते हैं। लेकिन शायद रोमांस का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपको कंफ्यूज करता रहे। रोमांस शायद वही है जहां आपको टेस्ट देने की जरूरत ही ना पड़े। और अगर 16 साल बाद भी अपने पार्टनर की लॉयल्टी चेक करने के लिए किसी तीसरे इंसान की जरूरत पड़ रही है, तो प्रॉब्लम लव ट्राइंगल में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है और आपके रिलेशनशिप में। एंड दैट इज वॉट कॉकटेल 2 ट्राइड टू एक्सप्लोर व्हेन आई वॉच्ड इट ऑन OTT। यार बॉलीवुड को भी शायद अब ये समझ लेना चाहिए दैट ऑडियंस रोम कॉम्स चाहती है, टॉक्स कॉम्स नहीं। वी डोंट वॉन्ट टॉक्सिक लव, बट फ्रॉम टॉक्सिक लव आई वॉन्ट टू प्ले स्वीट इनोसेंट लव। बर्फी नाम की फिल्म, उसका एक गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में, आशिया, इट्स माय स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 3

0: कुछ आवाजें चार्ट्स पर नहीं आती हैं, चार्ट्स को अपना घर बना लेती हैं। एंड गहरा हुआ ने इतने हफ्तों से कुछ ऐसा ही किया, लेकिन आज बहुत वक्त बाद उसकी जगह कोई और आ गया है। गाना बेशक अलग है लेकिन आवाज वही है, अरिजीत सिंह। लेकिन इस बार वो एक नए गाने के साथ नहीं, एक पुरानी याद के साथ लौटे हैं। आवारापन, एक फिल्म जो 2007 में आई थी, जिसके गाने हमने MP3 प्लेयर्स में भरे, आईपॉड्स में संभाले, फोन बदलते रहे, लेकिन गाने नहीं बदले। तो फिर आओ, तेरा मेरा रिश्ता, और इतने सालों बाद सवाल यही था, आवारापन का दर्द दोबारा कैसे लिखोगे यार? अमाल मलिक के सामने मुश्किल गाना बनाना नहीं था, मुश्किल था एक याद बनाना, और उस याद के लिए अमाल को एक आवाज चाहिए थी।
1: आप इनिशियली अरिजीत के फर्स्ट 3-4-5 इयर्स में आप हो सकता था कि आप कोई भी गाना दे दो अरिजीत के नाम से चल जाए, अब वैसा नहीं होता है और किसी के साथ भी नहीं होता है। गेट द बिगेस्ट सिंगर ऑफ द कंट्री ऑल्सो, अरिजीत सिंह ले लो, आप सोनू निगम ले लो, अगर गाने में बात नहीं है तो आप इतना ही विंडो तक उसको संभाल के बचा के प्रमोट करके यू कैन सेव इट। बट इफ इट इज गोइंग टू बी हर्ड एंड लव्ड एंड ऑल, तो सिंगर का भी हार्ट होना चाहिए, कंपोजर का भी हार्ट होना चाहिए, लिरिक्स राइटर सबका एक साथ में वो एनर्जी से गाना बनता। सो व्हेन ही हर्ड द सॉन्ग, इट वाज नथिंग कि उसने कोई पहले प्रॉमिस किया या हम लोग की कोई डील थी, यू नो पीपल ऑलवेज थिंक अच्छा कोई पुराना रिकॉर्डेड गाना अब रिलीज हो गया। सो सिंस अ ईयर इट इज बीन इन माई वॉइस, someone comes once in an era and becomes an Arijit Singh. Not everyone has the skill set also, not everyone has the blessing of God also, and not everyone has the heart also like him to step away in the prime. Yani he himself also used to tell, is gaane ke liye bhi usne mere liye ladai ki hai, usne bola hai sabko, are Amal ne itna acha gaya mujhe kyu gawa rahe. To maine bola aisa mujhe chahiye, I said in log kisi ki bhi nahi hai, I said meri requirement hai that you at least see if you like the song, pura ban gaya, check it out. So it was just about 3-4 months before abhi that song came that he started recording and revisited the song 2-3 times.
0: Aur aaj gehra hua ko piche chhod kar wahi aawaz phir se number 1 ban gayi hai. This is ye awarapan, the new undisputed number 1 song on the Mirchi Top 20.
2: Number 1.

0: ये आवारापन मिर्ची टॉप 20 को एक नई जगह पहुंचा दिया इसने, और शायद इसलिए गाने इतने कमाल के होते हैं। कुछ सिर्फ चार्ट्स पर ऊपर जाते हैं और कुछ सीधा दिलो दिमाग में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। वेल, दिस एपिसोड इज डन, लेकिन मैं वापस आऊंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot.
0: Mirchi, it's hot.
2: Mirchi, it's hot.
0: Mirchi, it's hot.
3: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: Mirchi, it's hot.
1: Love is messy, Jay.

आता है, ना रात को सोया जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स

0: करते दिल की फीलिंग्स
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. It's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई बजा

0: physical doctors.
1: Mirchi, it's hot.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम टू सेट द पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां आपके लिए हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन लेकर आते हैं। इस हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है। वी आर गोइंग टू हैव सम स्पेशल शाउट आउट्स, आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर, तो स्टे कनेक्टेड विद अस थ्रू आउट द काउंटडाउन। सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10, ज़ारा खान स्केल्स का गाना, गाने का नाम है मूव बॉडी। पिछले हफ्ते से अपनी पोजिशन पर बरकरार मूव बॉडीज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद शान एंड दीदार कौर की आवाज में उदिपन शर्मा का म्यूजिक, श्लोक लाल के लिरिक्स, गाने का नाम है दिलदारा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: ऐसा क्या है ना शान की आवाज में कि उनके गाने को जब हम सुनते हैं, वी कैन इमेजिन हिम स्माइलिंग, कि ये गाना गाते हुए कैसा स्माइल कर रहे होंगे. मैं उनके बारे में बात करते हुए भी स्माइल करने लग जाती हूँ. दीदार कौर एंड शान की आवाज में, दैट वॉज दिलदारा दिस वीक ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो मुझे,

आई ट्रूली बिलीव जो गाना हमें पसंद आने वाला होता है ना, वो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है। कब कैसे सुनना है, हम कौन सा अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं कि आज मैं वो गाना जाके सुनूंगी और मुझे वो गाना अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं होता है। वी जस्ट स्टंबल अपॉन दैट सॉन्ग। मे बी मैंने रेडियो पे चलाया हो, आपने सुन लिया हो, आप किसी कैफे में है और वहां वो गाना सुनाओ। इनफैक्ट मेरे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि पहले वो जो रियलिटी शोज आते थे ना टीवी पे, कोई कंटेस्टेंट जो गाने गा रहे थे लाइव परफॉर्मेंस, उनके थ्रू आई यूज्ड टू लव दोस सॉन्ग्स। एंड देन Recently, it's all about OTT shows for me. I remember मैंने Netflix की एक OTT series पे सबसे पहली बार प्रतीक कुहाड़ का तूने कहा मैंने सुन लिया सुना था, and I love the song. बंदिश बैंडिट्स के कितने सारे गाने हैं जो मैं बहुत पसंद है। Then last year Mismatch का, it's incredible that हमें अब original music मिल रहा है from OTT shows. इश्क है फ्रॉम Mismatch इज वन फॉर द हिस्ट्री बुक्स। ये गाने इतने बड़े हुए, लोगों को इतने पसंद आए कि इनकी अपनी अलग पहचान बन गई। और काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, इट्स ऑल्सो फ्रॉम अ OTT शो एंड इट्स अ नई नवेली एंट्री ऑन अ काउंटडाउन। मुसाफिर कैफे का गाना है। आई नो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है कि क्यूट सिंपल सी लव स्टोरी है, मैं अभी तक नहीं देख पाई हूँ, अगले वीकेंड का प्लान है मैं देखूंगी। दो लोग पहाड़ों में छोटा सा कैफे, सबका यही ड्रीम है। एंड जो गाना डेब्यू कर रहा है इस हफ्ते, उसका नाम है काफी है ना। ये गाना उस सिंपल सी लव स्टोरी की सिंपलिसिटी को डिफाइन कर देता है दैट अल्टीमेटली जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं, या हाउ डू वी वांट टू फील लव्ड, कि किसी के लिए हमारी प्रेजेंस बस इनफ है, दैट काफी है ना। अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। प्रियांश श्रीवास्तव एंड जुनिंदा गांधी की आवाज में है गर्वित प्रियांश, शाउट आउट टू बोथ ऑफ देम, उनकी कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है काफी है ना, नई नवेली एंट्री ऑन द काउंटडाउन फ्रॉम मुसाफिर कैफे। इट डेब्यू सीधा ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 8।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7.

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया।

0: जब फरक ने कहा हमारा ठोकरों से खास नाता है, the entire generation felt it together. फरक की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, दिस सॉन्ग तारे इज माई फेवरेट फ्रॉम द काउंटडाउन. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले हमने सुना संजू राठौड़ का बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, हैंडल इज @RJKanika. फॉलो करना बिल्कुल फ्री है. गाने सजेस्ट करती हूँ, बातें बताती हूँ, कोई आपको बातें शेयर करनी हो बिंदास आके हिट मी अप. इट्स टाइम टू पुट अ स्पेशल स्पॉटलाइट ऑन अ सॉन्ग जो अभी टॉप 10 गानों में एंट्री नहीं मारा है, पर जिस तरह से जनता इस गाने को प्यार दे रही है, डेफिनेटली इट विल मेक इट द काउंटडाउन. आज के स्पॉटलाइट का गाना इज बाय वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट ऑफ दिस काउंटडाउन ऑफ इंडस्ट्री टुडे. आई एम टॉकिंग अबाउट बंजारे. उनका नया नवेला गाना आया है बरसात. द सॉन्ग कैप्चर्स दैट फीलिंग कि जब आपका ब्रेकअप हो गया या किसी ने आपको छोड़ दिया है, दैट हर्ट्स ऑब्वियसली. बट पता है उससे भी ज्यादा बुरा क्या लगता है? व्हेन वी रियलाइज कि कोई हमसे आगे बढ़ चुका है, वो मूव ऑन कर चुका है. ये गाना एग्जैक्टली वहीं पर है. बट बिफोर वी टॉक अबाउट द सॉन्ग एंड वी लिसन टू द सॉन्ग, लेट्स टॉक अबाउट बंजारे, जिनका गाना बैरन मेरा और आपका दोनों का फेवरेट है. ये पूरा गाना आगे काउंटडाउन में फीचर होने वाला है. बट लेट्स टॉक अबाउट दीज आर्टिस्ट. इट्स अ ब्रदर डुओ कॉल्ड सुमित एंड अनुज, जो कुरुक्षेत्र जिले से आते हैं, जिन्होंने हरियाणवी म्यूजिक के टूवर्ड सबकी सोच बदल दी. रिच सॉन्ग राइटिंग, वेरी फोक स्टोरी टेलिंग का उनका अंदाज है एंड गानों को इतना होलिस्टिक बनाते हैं दैट यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स द इमोशन जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं. एंड सेम वही बात बरसात. इट गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, जो एक बंदी फील कर रही है जिसका गम खालीपन इस गाने में आपको जोर जोर से सुनाई देगा. द सॉन्ग गोज थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ. पहले तो वो मानती ही नहीं है, दैट इज डिनायल. फिर वो टूट जाती है, दैट्स पेन. फिर उसी गाने के दौरान वो ये बात समझती है कि जो छोड़ के चला गया वो मुड़के नहीं देखने वाला, दैट इज एक्सेप्टेंस. एंड देन उसके बाद शी डिस्कवर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग, जहां वो खुद के सुकून को प्रायोरिटाइज करती है. वो ये बात चुनती है कि अब इस फीलिंग को पकड़ के तो नहीं बैठ सकते, दैट इज लेटिंग गो. एंड वी ऑल हैव फेल्ट दीज इमोशंस कभी ना कभी किसी के टूवर्ड्स किसी स्टेज पर. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. बंजारे आर बैक एट इट अगेन. उनका नया नवेला गाना कॉल्ड बरसात, रीचिंग फॉर अ हार्ट, इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन आवर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट. बंदी का नाम है आरजे कनिका. एंजॉय.

0: कितने मेरी।
1: God damn, आप हरियाणवी नहीं समझते, मैं नहीं समझती हूँ, बट वो फीलिंग ऑफ लेटिंग गो वो पूरी अच्छी तरीके से इस गाने में समझ में आती है। गाने का नाम है बरसात बाय द वन एंड ओनली बंजारे ऑन आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट दिस वीक। बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। इट्स अ सॉन्ग फ्रॉम मुसाफिर कैफे। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार रेखा भारद्वाज जी एंड राघव कौशिक की आवाज में, राघव कौशिक का ही म्यूजिक। गाने का नाम है दरमिया, दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनका, एंजॉय।
2: Number 5.

0: You cannot not groove to this song. Anish Sarkar, Hruday Ka Gaana, Gaane Ka Naam Hai, Udi Udi, 11 Haftos Se Is Countdown Par Barkarar, this week on Gaana Number 4.
1: Gaana Indie Top 10. Gaane Ka Ke Saath. On Mirchi.
0: Mirchi par, this is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jao, follow karo. Mera handle is at RJ Kanika. The show is all about the hottest pop music of the week. And sometimes, jo gaane hame achhe lagne hote hain na, hum unhe dhoondne nahi nikle hote hain. Wo bas hamare raaste aa jaate hain. Aise maine pichle hafte ek gaana suna called Baavre. It's one of those songs जिसको सुनते ही मैंने अपने चार दोस्तों को बोला कि यार ये गाना सुन, बहुत अच्छा लगेगा. तो I'm going to play that song for you, which is basically about one-sided love. And इतने poetic way में इन्होंने one-sided love के बारे में बात करी है. You know, वो चांद है, चांद के आसपास एक रोशनी है जो ना उस चांद को छू पाती है ना उसे छोड़ के जा पाती है, बस वो है. उस रोशनी के जरिए यहाँ पर one-sided love के बारे में बात हुई है. Honestly, गानों में अच्छा साउंड करता है, आई होप किसी को कभी ना हो. बट प्लॉट ट्विस्ट ये है, दैट इज गाने में फीलिंग गहरी है, सोच बहुत गहरी है, बट गाना बिल्कुल भारी नहीं है. इट्स अ ब्रीजी पॉप सॉन्ग, बहुत मेलोडिक रैप है. विकिट सनी ने इसे ऐसे लिखा है कि दर्द छुपता नहीं है, पर गाने की फीलिंग आप पर बोझ की तरह भी नहीं आती है. इट्स लाइक अ फील गुड कंपेनियन एंड यू आर एंजॉयिंग इट थॉरली, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सॉन्ग. तो अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. गाने का नाम है बावरे बाय ऋषि रॉय एंड विकिट सनी, स्टारिंग कशिश रत्नानी. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: कह दूं

That was a song called Bavare by Wicked Sunny and Rishi Roy. One of those songs, मुझे पता है अब आप सुन के दो दोस्त को recommend करोगे कि इसको जरूर सुनना. At RJ Cunning on Instagram पर आओ, ऐसे कोई गाने हैं you want me to play next week, हमसे आके share करो. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. 21 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. गाने का नाम है Shisha, मिटर और की composition, उन्हीं की आवाज, also featuring Swara Verma. पिछले हफ्ते से एक position नीचे drop होके Shisha is playing right next for you on Gaana number 3. You're listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 3.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गाने हम आपके लिए लाते हैं। कनेक्ट विद मी, मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पर @RJKanika। कोई गाना बताना हो, कोई सजेशन हो, बिंदास आके हिट मी। आप कोई सवाल है, बिल्कुल वी वेलकम इट @RJKanika पर बताओ। मैं और मेरे प्रोड्यूसर अशकाय, वी टेक योर सजेशन रिकमेंडेशन वेरी वेरी सीरियसली। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
2: तेरी दीवानी।
1: गाने का नाम है तेरी दीवानी, कैलाश खेर की आवाज में बाय हिज बैंड कॉल्ड कैलासा। साल था 2000 एंड कैलाश खेर की आवाज वॉज द मोस्ट बुलंद आवाज ऑफ दैट ईयर। अब इतनी पुरानी बात लगती है दैट आई वॉन्ट टू रियली पिक माई ब्रेन एंड थिंक दैट मैंने क्या सोचा था जब मैंने सबसे पहली बार कैलाश खेर की आवाज सुनी थी, बिकॉज इट साउंड सो अर्दी रॉ, कुछ कच्ची मिट्टी से जुड़ी हुई आवाज है उनकी। एंड दिस सॉन्ग वॉज एवरीवेयर। इस गाने की ब्यूटी मुझे ये लगती है दैट हर किसी के लिए तेरी दीवानी गाने का मतलब अलग है। किसी के लिए इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, इश्क वाला, प्यार मोहब्बत वाला, दैट आई एम ऑल अबाउट यू बेब, पर किसी के लिए ये गाना एक इबादत के जैसे है, अ डिवोशनल सॉन्ग। देन देयर आर आल्सो पीपल जिनके लिए एक सूफी गाने की तरह है, जहां प्यार और बंदगी में कोई फासला नहीं होता, जहां आप किसी इंसान को इतना चाहते हो दैट वो उस इंसान की ही इबादत करने लगते हो। यू माइट नॉट अग्री विद किसी और का वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ आर्ट ना, टू ईच देयर ओन। एंड तेरी दीवानगी बाय कैलासा एग्जैक्टली वही गाना है। ये किसी एक बॉक्स में फिट ही नहीं हो सकता है। ये आप अपने दिल टूटने पर भी सुन सकते हो और किसी दिन सुकून ढूंढने के लिए भी। शादी में एक रोमांटिक गाने की तरह भी चल सकता है एंड अकेले कमरे में आंखें बंद करके भी ये गाना अच्छा लगता है। बट व्हाट्स कॉमन अमंगस्ट ऑल दीज थिंग्स इज इस गाने की कॉम्पोजिशन, कैलाश खेर की आवाज एंड व्हाट इट मेक्स यू फील। तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। कैलाश खेर की आवाज में कैलासा द बैंड का गाना दिस इज तेरी दीवानी ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय।

डूड, कैलाश खेर की आवाज में जो दर्द है इन तेरी दीवानी, वो दर्द सीधा कलेजे पे लगता है, दिल नहीं कलेजा। दैट वॉज तेरी दीवानी ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनेक और इंस्टाग्राम पर आओ। 90s 2000s के वो गाने जो आज भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है, हमसे आके शेयर करो। मैं और अशका आपके सारे गाने, सारे रिकमेंडेशन को ध्यान से देखते हैं। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। इस हफ्ते के काउंटडाउन में गाना नंबर 2 पर इज हर्ष नुस्सी का गाना साडी सुन। पिछले हफ्ते से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, आई स्वेयर आई एम नॉट इवन किडिंग, पांच भी नहीं, ये गाना पिछले हफ्ते से पूरे 7 पोजीशंस ऊपर उठ के दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक इज येट अगेन बैरन। बंजारे दे आर्टिस्ट का गाना 21 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैरन इज ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक, हर्ष नुस्सी का साडी सुन ऑन नंबर 2, बंजारे का बैरन ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।

Mitchie. It's hot.

0: Avicii. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, इन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: आजकल फिल्म देखने के बाद सबसे डेंजरस सवाल ये नहीं है कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, सबसे डेंजरस सवाल है कि मुझे इसे देखना क्यों चाहिए था, क्योंकि ऑडियंस बदल गई है। अब सिर्फ बड़ा स्टार काफी नहीं है, सिर्फ बड़ा बजट काफी नहीं है, सिर्फ VFX का शोर भी काफी नहीं है। कहानी में कुछ तो होना चाहिए, कुछ ऐसा जो स्क्रीन बंद होने के बाद भी दिमाग में चलता रहे। शायद इसलिए हिंदी सिनेमा के बीच का वो खाली स्पेस फिर से भर रहा है। कभी एक पुरानी याद नई आवाज बनकर लौट जाती है, कभी एक छोटी सी कहानी बड़े पर्दे को चैलेंज कर देती है, और कभी बॉलीवुड हमें रोमांस के नाम पर ऐसे ऐसे लॉयल्टी टेस्ट दे रहा है कि हम खुद सोच रहे हैं भाई थेरेपी लेनी पड़ेगी क्या। तो इस हफ्ते फिर देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या टिक रहा है, और सबसे जरूरी क्या याद रह रहा है। हाय, मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड वी किक स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉन्ग जो है गाना नंबर 20, राघव जुयाल की भाई तेरा स्टार है का ट्रैक बाय अमित त्रिवेदी। दिस इज रंग बरसे
3: नंबर 20।

शायद 2026 में धुरंधर एक गहरी याद बन के रह जाए, लेकिन जब मेरी जेनरेशन थोड़ी केयरफ्री थी और जिम्मेदारियां उतनी भारी नहीं फील होती थी, तब भी एक याद थी। तीन दोस्त, एक गाड़ी और स्पेन की सड़कें, और सामने पूरी जिंदगी। 2011 में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ने हमें यही तस्वीर दी थी। अर्जुन को समंदर में उतरना था, इमरान को अपने अंदर का डर खत्म करना था, और कबीर को अपनी जिंदगी का फैसला करना था। और हम सिनेमा हॉल से निकले तो लगा कि हाँ यार, जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए। फिर 15 साल निकल गए। वो तीन दोस्त तो स्क्रीन पर कहीं रुक गए, लेकिन हम नहीं रुके। हमारे बाल बदले, चेहरे बदले, दोस्तियों के बीच नए नाम आ गए, कुछ लोग शादी तक पहुंच गए, कुछ सपने रस्ते में रह गए। और शायद इसलिए अगर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल कभी आता भी है, तो मुझे यार स्पेन की एक और रोड ट्रिप नहीं चाहिए। मुझे देखना है कि उन तीन दोस्तों के साथ जिंदगी ने क्या किया, क्योंकि पहली फिल्म में तो वो जिंदगी को ढूंढने निकले थे, लेकिन अब शायद जिंदगी उन्हें ढूंढने आ गई है। नंबर 18 पर है चटनी धमाल 4 से, बट जिस ट्रिप पर निकले हैं उसे पूरा करते हैं। वो ट्रिप जिसकी हवा आज भी चलती है, ख्वाबों के परिंदे। शायद इस बार हम स्पेन नहीं देख रहे, शायद हम खुद को पीछे मुड़कर देख रहे हैं।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 it's hot Suren ke saath only on Mirchi it's hot
1: number 17
2: katl karti hain nigahein ki dil ko khabar na ho zakhm deti hai aisa ki dard ka asar na ho हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो yeah.

रात लंबी हो जाए ना तो आदमी अक्सर दो चीजें करता है, पुरानी बातों को पढ़ता है और पुराने गाने सुनता है। क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम किसी को बता नहीं पाते, बस एक गाने में पहचान लेते हैं। और शायद इसलिए पिछले दो दशकों से हमारे हार्ट ब्रेक की आवाज में एक नाम बार बार सुनाई देता है, सईद कादरी। कभी किसी के होने की ख्वाहिश।

0: सईद कादरी, तो फिर आओ तेरा मेरा रिश्ता, जरा सा हाले दिल। इमरान हाशमी की फिल्मों में तो जैसे उनकी कलम ने एक पूरी दुनिया बना दी, लेकिन बात सिर्फ इमरान की नहीं है, आपकी है, मेरी है, हम सबकी है, क्योंकि हमने उनके अल्फाज को अपनी कहानियों में लगा लिया, अपनी रातों में उन्हें गुनगुना लिया। बस जिस आदमी ने वो अल्फाज लिखे उसका नाम कहीं पीछे छूट गया। तो याद रखना, ये सारे जज्बात जो इन गानों में हम महसूस करते हैं, ये देन है सईद कादरी के। नंबर 15 पर इस बार है टॉक्सिक का ये गाना मदहोश।
1: नंबर 15

आरी आरी नंबर 13 पर है और धुरंधर ने एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। जब कहानी इतनी बड़ी हो कि दो फिल्में भी छोटी पड़ जाएं, तो मीडियम का फैसला कौन करे। धुरंधर को दो फिल्में मिली, तीन तीन चार चार घंटे लंबी, फिर भी लगा यार और है, और यही तो सिनेमा का असली जुगाड़ है। कभी कभी फिल्म मेकर के पास कहानी होती है लेकिन मीडियम उसकी गर्दन पकड़ लेता है। अब फाइटर को देखिए, ऋतिक रोशन, एयरफोर्स, सिद्धार्थ आनंद, फाइटर जेट्स, पाकिस्तान से जंग और वो स्केल, सब कुछ आंखों के लिए बना था लेकिन कहानी ने दिल को पकड़ा ही नहीं। और फिर आती है एक वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सालर। इसमें कोई सुपरस्टार नहीं, कोई थिएटर का शोर नहीं, कोई बजट की ब्रेकिंग न्यूज नहीं, लेकिन कारगिल की वो कहानी जो स्क्रीन पर हवा में उड़ती है ना, आप देखते नहीं हो, आप उसमें खो जाते हो। बस यही फर्क है, ओटीटी हो या सिनेमा, मीडियम कहानी का साइज तय नहीं करता, कहानी मीडियम तय करती है। क्योंकि वीएफएक्स आंखों को रोक सकता है, स्टार्स आपको थिएटर तक ला सकते हैं, लेकिन कहानी ही आपको कुर्सी से बांध के रख सकती है। बाकी सब एपेटाइजर हैं, मेन कोर्स में अगर दम नहीं है तो प्लेट कितनी भी महंगी क्यों ना हो, मजा नहीं आता। ऑपरेशन सफेद सागर अब ओटीटी पर स्ट्रीम कर रही है, एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड इट तो टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना। खैर, मूविंग टू गाना नंबर 12, अच्छे गाने का बुरा रीमेक, आंखों से तूने क्या कह दिया फ्रॉम राघव जुयाल फिल्म भाई तेरा स्टार है। नंबर 12।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 11

0: माशूका, एक ऐसा गाना जो सुनते ही बॉलीवुड रोमांस की पुरानी आदत याद आ जाती है। लेकिन कुछ फिल्म्स की आदत नहीं होती, उनसे उम्मीद होती है। कुछ महीनों पहले जावेद अख्तर साहब ने बंटवारा 1947 को लेकर एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर एक्सपेक्टेशंस सीधा आसमान तक पहुंच गए थे।
1: एक प्रेडिक्शन में करना चाहिए, आई नो आई एम पुटिंग माय नेक आउट ऑन द ब्लॉक, मगर मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा वेन हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन राइट, इफ आई हैव नॉट लाइक द पिक्चर, दैट पिक्चर इज नॉट ट्रू। मैं आपको बताता हूँ, एक पिक्चर आने वाली है जो चाहे मल्टीप्लेक्स हो और चाहे ऑडियंस हो सिंगल, उसमें वो पिक्चर चलेगी और लोगों को पसंद आएगी। वो पिक्चर इस वक्त ये बना रहे हैं, मैं आई एम पुटिंग माय नेक ऑन द ब्लॉक। मुझे मालूम है कि आप लोग भूलेंगे नहीं, मगर जब मैं सही साबित हूँ तो सलाम करने आइएगा।
0: अब जरा सोचिए, आमिर खान इज प्रोड्यूसर, राजकुमार संतोषी डायरेक्टिंग अ फिल्म आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा एज द कास्ट, जावेद साहब के लिरिक्स और ए आर रहमान का म्यूजिक। यार ये कॉम्बिनेशन फिल्म नहीं है, ये एक इवेंट है। और फिर वो फिल्म आती है और उसका म्यूजिक भी आता है और एक अजीब सी चीज होती है, कुछ भी पीछा नहीं करता। ना वो एक मुखड़ा जो दिमाग में अटक जाए, ना वो एक लाइन जो आप किसी दोस्त को भेजें, ना वो एक गाना जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ घर आए। और मुझे इसलिए हैरानी नहीं है कि बंटवारा 1947 का कोई गाना एक सुपरहिट गाना नहीं बना या शायद मिर्ची टॉप 20 पर नहीं आया। मुझे हैरानी है कि एआर रहमान और जावेद अख्तर की फिल्मोग्राफी से निकला हुआ एक भी गाना अभी तक मेरी यादों में जगह नहीं बना पाया। हो सकता है कि वक्त बदले, हो सकता है दैट दिस एल्बम ग्रोज ऑन मी, हो सकता है कि कोई गाना धीरे धीरे अपना रास्ता बना ले, लेकिन तब तक मैं उस एक गाने का इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग। और जब बात आमिर खान और एआर रहमान की हो, तो एक वक्त था जब दोनों ने ऐसे गाने दिए थे जो आज भी बिना किसी इंट्रोडक्शन के दिल में उतर जाते हैं। माई रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्रैक्स एवर, तू बिन बताए, रंग दे बसंती से।
2: Top 20 Rewind.